0: Kal, we should run the house smoothly.
1: So you have also urged the opposition MPs not to create chaos. Parliamentary smooth democracy should be there.
0: Ha, bilkul. Kal, we should run the house smoothly.
2: हम लोगों को जो सबसे बड़ा विषय थे हमारे प्रेस डिवीजन नंबर इन द पार्लियामेंट हाउस दैट हैज बीन डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल स्पीकर एंड ईच वन ऑफ अस हैव बीन इंटीमेटेड सेपरेटली दैट व्हाट वाज आवर प्रीवियस डिवीजन नंबर एंड व्हाट इज नाउ द न्यू नंबर अलॉटेड टू अस सो ऑल क्वेश्चंस रिगार्डिंग रिकॉग्निशन बाय द स्पीकर इवन विच रिफ्लेक्टेड जो आज सुबह सर्वदलीय बैठक में भी हुआ था सब विरोधी दल वॉकआउट कर दिया था हम लोगों को क्यों बुलाए तो आज के बाद ये प्रश्नकाल और नहीं उठ पाए
3: जी
2: क्योंकि स्पीकर स्वीकृति दे दिया डिवीजन नंबर दे दिया और हम लोग भी ये सिद्धांत किया कि हर विषय पर चर्चा में हम लोग भाग लेंगे एनडीए को साथ रहेंगे और बंगाल की उन्नयन और उसको साथ देश को उन्नयन पे जो जो तरीका से एनडीए को साथ देना चाहिए हम लोग डील खुल के
3: आप समर्थन करेंगे
4: द कंसर्न इज दैट इस्लामिक कांग्रेस पार्टी हैज बीन कॉल्ड टू मीटिंग पार्टी व्हिच हैज नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्पीकर हुज नेम डज नॉट अपीयर ऑन द वेबसाइट देयर इज नो स्कोप फॉर अ सेपरेट ब्लॉक वाई हैव
5: It's a matter of integrity of the opposition that when a petition, when a representations are pending with the speaker with regard to the split of a party, the rebel faction is invited for the meeting. And we feel that it's a miscarriage of justice. And when Trinamool Congress pointed out regarding the invitation extended to the rebel faction, we all expressed our strong protest with regard to the complete utter disregard to the institution of political parties and opposition. As a token of protest, we all have walked out.
1: Sir, Kakoli Ghosh clearly stating that the decision is still pending with the Lok Sabha Speaker. They are going to submit the papers specifically.
5: They are going to submit. Has the Speaker taken a decision about that? Speaker has adjudicated on other parties like Shinde, Shiv Sena, etc. Speaker is yet to take a decision on this TMC split. When the Speaker's decision is pending, it's grossly unfair on the part of the government to invite the rebel faction for the meeting.
1: Are you saying that this has never happened in the past?
5: Never ever happened in any country.
6: Is granted to them. Where is that term in the books of law? Yes. This schedule 10 doesn't say anything about that, and therefore we too have protested against it and walked out of the
7: यहाँ पे आपने देखा कि महाराष्ट्र से बगावत करने वाले सांसदों को किस तरह से इनवाइट किया गया जबकि अभी तक स्पीकर ने उन्हें मान्यता ही नहीं दी है तो ये तो पूरे देश में हो रहा है कोलकाता में टीएमसी को तोड़ा गया और भी राज्यों में तोड़ा जा रहा है अगर इसका विरोध नहीं करेगी विपक्ष तो कानून को बिल्कुल साइड करके कुछ भी आप मनमानी नहीं कर सकते हैं ये लोकतंत्र है लेकिन देश में जो कुछ चल रहा है इससे लग रहा है कि लोकतंत्र की बजाय अब एकतंत्र आने वाला है इसी का हम विरोध करते हैं क्योंकि ऑल पार्टी मीटिंग में उनको बिना कानूनी ये के बुलाना किसी भी तरह से मान्य नहीं
1: है को तो लेकिन पत्र पहले से ही दे दिया गया था पिटीशन जो सबमिट करी थी दोनों तरफ से वो उनके हाथों में
7: है लेकिन उन्होंने उसको डिक्लेयर तो नहीं किया है ना
1: तो कहना है कि वो किसी भी पार्लियामेंट्री ग्रुप को बुला सकते हैं उनका
7: ये तो अब अपोजिशन को बताएं ये बात लिखकर अपोजिशन को जो लग रहा है उन्होंने किया है अगर उनके तरफ से कोई सफाई है तो वो सफाई भी दे
8: The Delhi High Court has refused the plea to transfer Sonam Wangchuk to a private hospital. Wangchuk will remain at the government-run Safdarjung Hospital for medical treatment. The court ruled that the government's shift was not an arbitrary action. Judges stated that the government was well within its rights since Wangchuk did not self-admit. Wangchuk's family questioned why no health tests were conducted at the protest site. The family has been granted unlimited access to meet him. Team Wangchuk argued that government move may allow forceful treatment against his will. Lawyers claim that Wangchuk has no access to his own doctors or the legal counsel.
9: तो वो कह रहे थे कि क्योंकि हमें उनकी हेल्थ की बहुत परवाह है और उनकी हेल्थ डिटेरियोरेट हो रही थी इसलिए हमने उनको लाया लेकिन ये दोनों बातें गलत हैं उनकी फर्स्ट ऑफ ऑल कोई हेल्थ डिटेरियोरेट नहीं हो रही थी अगर आप उसके एक दिन पहले की शाम की रिपोर्ट्स देखें तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी, वो पोटेशियम 4.3 था, बाकी भी सारे पैरामीटर्स नॉर्मल थे। दैट्स नंबर वन। नंबर टू, अगर आपको उनकी हेल्थ की इतनी ही चिंता है तो आपने सिविलियन ड्रेस में पुलिस क्यों भेजा और इतनी बेरहमी से क्यों उनको उठा के स्ट्रेचर में डाला और लेके गए? आप प्रॉपरली आके एक मेडिकल टेस्ट कर सकते थे और आप उनकी फैमिली को कह सकते थे कि ये लो है इसलिए हम ले जाना चाहते हैं। वो तरीका होता है एक डेमोक्रेसी में, अगर आप ट्रूली उनकी हेल्थ के लिए चाहिए थे। तो विदाउट मिंसिंग वर्ड्स मैं ये कहना चाहूंगी कि ये सब नौटंकी है कि ये हम हेल्थ के लिए चिंतित हैं और ये है। उनको बस डर था कि अगर कल मार्च में सोनम निकल पड़े तो लाखों साथ में जुड़ जाएंगे, सिर्फ दिल्ली में नहीं पूरे देश भर में, और उनको ये रोकने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि सोनम के होने से जितने लोग आते थे और आने वाले हैं, उनके ना होने से उसके दुगने लोग आएंगे।
10: We had come with very high hopes to the High Court, because the larger question is, if a person is not under detention, अगर वो अपराधी नहीं है या उसके अगेंस्ट कोई केस नहीं है और वो ये कह रहा है कि मुझे अपने चॉइस के अस्पताल में जाना है, तो कोई रोक सकता है क्या? ये सरकार कह सकती है कि क्या नहीं, आपको हमारे सरकारी अस्पताल में ही इलाज कराना पड़ेगा। और हमारा ये कहना है, हाईकोर्ट के डिविजनल बेंच का जो ऑर्डर है इज बीइंग मिस इंटरप्रेटेड। देर इज नो सच ऑर्डर ऑफ द हाईकोर्ट टू डिटेन मी, एंड देर कैन बी नो डिटेंशन इवन वेदर आई एम सिक और नॉट सिक इफ देर इज नो केस अगेंस्ट मी। सो टूडे हाईकोर्ट हैज हर्ड बोथ साइड्स, इट हैज पास्ड अ लॉन्ग ऑर्डर, उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें बोली हैं। हाईकोर्ट हैज आस्क देम टू ऑल्सो शेयर रिपोर्ट्स विथ हर। हमने ये भी कंप्लेन की कि साहब वहां का एटमोस्फेयर बहुत खराब है, देर आर 30 पुलिसमैन स्टैंडिंग नियर और आउटसाइड हिज रूम, 100 पुलिसमैन स्टैंडिंग इन द ग्राउंड फ्लोर सम प्लेस, जैसा इन्होंने मुझे बताया। तो आप बताइए कि कोई पेशेंट का अगर ब्लड प्रेशर ऐसी स्थिति में ऊपर नहीं जाएगा तो क्या नीचे जाएगा?
11: हेल्थ अपडेट है श्री सोनम वांगचुक के बारे में। जैसे आप जानते हैं कल सुबह से हमारे साथ वे एडमिटेड है, कल के जैसे वे फुल्ली अलर्ट हैं, कॉन्शियस ओरिएंटेड हैं, उनके वाइटल पैरामीटर्स जैसे ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, ऑक्सीजन सैचुरेशन सारे नॉर्मल हैं। बट उनके जो ब्लड पैरामीटर्स हैं, जैसे जो लैब पैरामीटर्स हैं, थोड़ा सा एबनॉर्मल है, बॉर्डर लाइन से नॉर्मल से थोड़ा कम है या ऊपर है। सो उसका हम जांच कर रहे हैं, लगातार हमारी तरफ से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। पर क्योंकि वो कमज़ोर हैं और अभी भी उपवास पे हैं तो उनको लगातार मॉनिटरिंग और जांचों की ज़रूरत हो रही है, इसलिए हमारी जो कंबाइंड टीम है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की और हमारी, हम सब की सहमति यही है कि वे भर्ती रहे, क्योंकि उनको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, क्योंकि इनके ब्लड पैरामीटर्स अभी भी फुल्ली नॉर्मल नहीं है।
8: A political storm has erupted in Karnataka after Congress MLA H.C. Balakrishna controversial remark targeting Union Minister Shobha Karanjale. Speaking on the proposed Bidadi Township project, Balakrishna claimed that the project was initiated during former CM B.S. Yediyurappa tenure and took a personal swipe at Karanjale by referring to Yediyurappa as her yajman, a Kannada term commonly used to mean husband. The remark has triggered a sharp political backlash. The BJP has slammed the Congress MLA, calling the comment sexist, derogatory, insult to a woman. The party has demanded an unconditional apology from the Congress and strict action against Balakrishna, accusing the ruling party of resorting to personal attacks out of frustration over BJP protests against the Bidadi Township project.
12: ಸ್ವಲ್ಪ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸೋಬಕವ್ರೆ, ನಿಮ್ ಪಾಪದ ಕೂಸಿದ್ದು ಒತ್ಪಟ್ಟು ತಿಂತಾ ಇರೋದು ನಮ್ ನಿಖಿಲ್ ನಡ್ಡ ಹೇಳ್ದ.
13: ವೆಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ವಿಲೇಜ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಡಿರೋಗೇಟಿವ್. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿಲ್ಟಿ ಆರ್ ದೇ ಫೀಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿರೋಗೇಟಿವ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಅಪೊಲಜೈಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಟ್.
14: ಆಫ್ ಶೇಮ್ಲೆಸ್ನೆಸ್, ಬ್ರೇಜನ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸೋಜಿನಿ ಬೈ ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಫಸ್ಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಅ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್, ದ ಬಿದಾದಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್, in order to take away the farmers' lands, agricultural lands, at the cost of the environment, at the cost of the people, to benefit the real estate mafia. And when BJP protests, then they use the most sexist, misogynistic comments against Shobha Karanlaje. A Congress MLA says that this project

0: So it's a very heart-breaking moment, breaking moment for the Argentinians fan, Messi fans right now.
1: Well, with that, it's time we step into a short break. We'll be right back.
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: सरकार इन विषयों से भागेगी, अयोध्या राम मंदिर के विषय से, छात्रों के विषयों से, एथेनॉल के विषयों से भागेगी, नैतिक जिम्मेवारी लेने से अगर कतराएगी तो भारी नुकसान सरकार का होगा।
1: ऐसा है कि वंदे मातरम हमारे यहाँ का राजदान है और हम लोग इसके लिए अभी पीछे आपने सुना ही होगा कि वंदे मातरम का जो पूरा रूप नहीं सुनाया जाता था वो अब सुनाया जा रहा है सब जगह, तो उसके ऊपर जो बिल आ रहा है तो ये हम लोग उसका स्वागत करते हैं। ये सारे बिल जितने भी आ रहे हैं ये सब बहुत इम्पोर्टेंट बिल्स हैं और इस बार का ये सेशन हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बिल्स को पास कराने का है और मुझे लगता है कि सारा अपोजिशन भी इसमें साथ देगा और हम लोग इसको बिल को पास करा लेंगे।
2: वीमेन रिजर्वेशन बिल पास हो चुका है, अब ये जो डिलिमिटेशन के नाम पे बीजेपी जिताओ बिल पास करना चाहते हैं उसका हम समर्थन नहीं करते। वीमेन रिजर्वेशन बिल तो पास हो चुका, उसका हमने समर्थन किया था, लेकिन अब ये बीजेपी जिताओ बिल पास करना चाहते हैं उसका हम समर्थन कैसे कर सकते।
3: Parliament's monsoon session is beginning amid a fresh political battle over defections, party recognition, and of course, seating arrangement inside both the houses. You see, the spotlight is on the 20 rebel Trinamool Congress MPs who've claimed to have joined the Nationalist Citizens Party of India, or the NCPI. While Lok Sabha Speaker Om Birla has approved separate seating for the rebel lawmakers, a final decision on granting official recognition to the NCPI is still pending. Rebel leader, meanwhile, Sudeep Bandyopadhyay, however, he's claimed the recognition issue has been resolved already and that PM Modi assured them of full support. The TMC has strongly objected. It's vehemently thrown down the gauntlet, arguing that 20 disqualification petitions are still, in fact, pending and that the Speaker has not yet decided the rebels' legal status. Meanwhile, in the Rajya Sabha, the upper house of the parliament, the DMK has been allotted separate seating away from the Congress, reflecting a revised seating arrangement rather than any change in the alliance. Meanwhile, my colleague Himanshu caught up with Mr. Bandyopadhyay and here's what he had to say.
4: हम लोगों को जो सबसे बड़ा विषय थे हमारे प्रेस डिवीजन नंबर इन द पार्लियामेंट हाउस That has been decided by the Honorable Speaker. And each one of us have been intimated separately that what was our previous division number and what is now the new number allotted to us. So all questions regarding recognition by the Speaker, even which reflected jo aaj subah sarvadaliya baithak mein bhi hua tha, sab virodhi dal वॉकआउट कर दिया था हम लोगों को क्यों बुलाए। तो आज के बाद ये प्रश्नकाल और नहीं उठ पाए
5: जी,
4: क्योंकि स्पीकर स्वीकृति दे दिया, डिवीजन नंबर दे दिया और हम लोग भी ये सिद्धांत किया कि हर विषय पर चर्चा में हम लोग भाग लेंगे, एनडीए को साथ रहेंगे और बंगाल की उन्नयन और उसको साथ देश को उन्नयन पे जो जो तरीका से इंडिया को साथ देना चाहिए हम लोग डील खुलते
5: आप समर्थन करेंगे।
3: एंड वेल व्यूअर्स, वी बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, डोंट यू गो एनीवेयर।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।
2: सबका राजा आकर मसाला।
6: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ। 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैचमेकिंग सर्विस। फॉर द एलीट
7: इंडिया इंक्स मोस्ट रिस्पेक्टेड नेम्स shows India Inc.'s best and brightest.
8: These kind of awards and the jury lineup, you are truly giving it the right weightage.
9: I think it's heartening to see talent that there is in across India Inc.
10: We should be awarding companies and individuals who have focused not only on growth but also on bringing good governance.
11: Be part of jury and vote on the people, the men, the women, the companies in India who have the right stuff is a great opportunity for us.
12: For us, the biggest thing is trust. That's what we provide.
13: We need leaders in India that can help take India being a global superpower.
14: We've got a fantastic jury and we've left all decisions to the wisdom of the jury.
7: Who will earn India's top business honors? Find out at the NDTV Profit Business Leadership Awards.

0: देश का टायर जेके टायर।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
4: When others are warming up, I'm raring to

उसमें जो नौजवान काम कर रहे हैं, मुझे बताया गया उनकी पूरी टीम की जो एवरेज एज है वो सिर्फ 28 साल है। ऐसे नौजवानों ने ये काम करके दिखाया है। मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं देश के ये स्टार्टअप ने 28 के एवरेज वाले नौजवानों ने अंतरिक्ष में भारत का झंडा गाड़ दिया है, उनको तो बधाई है ही है। लेकिन ऐसी बातें जो हैं, जो भारत को आत्मविश्वास से भर देती है, विश्व में भारत का प्रोफाइल सर्वमान्य सर्वस्वीकृत बनता जाता है। साथियों, ये संयोग नहीं, ये एक संदेश है और बड़ा मजबूत संदेश है कि हमारे देश के युवाओं की क्षमता और उनकी आकांक्षा अंतरिक्ष जितनी असीम है, इससे बड़ा संदेश देश के लिए कोई और प्रेरणा नहीं दे सकता है। साथियों, जो रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार होकर के आज देश चल पड़ा है, उसी का नतीजा है कि भारत के नौजवान इतना बड़ा साहस कर पाते हैं और सफल भी हो रहे हैं। साथियों, पिछले दिनों राजस्थान में बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी देश को समर्पित की गई। पिछले कुछ सप्ताह पहले एक सेमीकंडक्टर प्लांट यानी तीसरा देश को समर्पित किया गया। अभी कुछ दिन पहले ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन, और विश्व में बहुत कम देश ऐसे हैं कि जिनके पास ये सुविधा है, लेकिन भारत ने जो हाइड्रोजन ट्रेन देशवासियों को समर्पित की है वो सबसे ताकतवर इंजन वाली है और सबसे लंबी है। ये अपने आप में भारत के वैज्ञानिक, भारत के इंजीनियर्स, भारत के इनोवेटर्स, भारत के उद्यमी, भारत के श्रमिक, ये जो एक लक्ष्य लेकर के देश के लिए जी रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, उसी का परिणाम है। साथियों, हम भले भांति जानते हैं और पूरी दुनिया चिंतित भी है, लगातार कहीं न कहीं युद्ध की स्थितियां बनती रही है। पश्चिम एशिया के युद्ध के कारण भारत जैसे देश जो एनर्जी के लिए औरों पर डिपेंडेंट है, उनके लिए ये पश्चिम एशिया का युद्ध एक बहुत ही बड़ा संकट का कारण रहा। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, फर्टिलाइजर, केमिकल्स, यानी हर विषय में अनेक बाधाएं, अनेक संकट आए। उसके बावजूद भी भारत 7.7% के ग्रोथ से दुनिया की मेजर इकोनॉमी में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश बन के रहा। ये भारत के सामर्थ्य का परिचायक है। भारत किस प्रकार से उत्साह और उमंग के साथ नई ऊंचाइयों को पार करना चाहता है, उसकी इसमें झलक है। और ऐसे में जब ये मानसून सत्र आरंभ हो रहा है, देश ने स्पीड पकड़ ली है और संसद का स्पिरिट उस स्पीड में नई ऊर्जा भर सकता है।
सकारात्मक स्पिरिट राष्ट्र के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक होता है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रिकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
5: उसकी ब्लेडिंग रुकी नहीं लगातार था। उसके दूसरे दिन दोनों ने मृत्यु घोषित कर दिया उसको। ये हॉस्पिटल की लापरवाही है।
6: NDTV traced each and every affected family and also visited multiple hospital wards.
7: NDTV had reported extensively on why are these deaths happening in Rajasthan.
8: Checked all the medications, the drugs, everything. We called AIIMS Jodhpur also to do an investigation on it.
9: Big NDTV impact when it comes to Rajasthan maternity deaths. NDTV coverage.

0: नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: द शिव सेना शिंदे फैक्शन कॉर्पोरेटर इज सीन असॉल्टिंग अ फीमेल डॉक्टर एंड नर्सेस एट अ हॉस्पिटल इन डोंबिविली।

0: का, लेकिन सरकार इतनी कठोर इतनी निष्ठुर सरकार है, ये अपने आगे किसी की चलने नहीं देती है। हम लोग, मैंने पहले भी बताया है कि हम लोग छात्र के साथ है और हम अभी वॉक करेंगे जंतर मंतर के लिए।
1: यहाँ से जंतर वॉक करके जाएंगे आप लोग?
0: देखते हैं कितना बैरिकेडिंग लगा है, जो स्थिति देखने को मिल रही है जहाँ बच्चों पर लाठियां बरसाई जा रही है। बताइए, देश के बच्चे अब लाठी खाएंगे? आप रोजगार नहीं दे पा रहे उनको, आप उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हो। 90,000 प्राइमरी स्कूल बंद कर देना, लाखों बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर देना, ये कोई मजाक हो रहा है देश में?
2: लेकिन मैम, सरकार की तरफ से तो क्लैरिफाई किया गया था कि नीट को लेकर हम लोगों ने सब कुछ क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है।
0: आई थिंक द होल प्रोसेस इज करप्टेड और इसका जो खामियाजा है, इसका जो मानसिक जो तनाव से जो है वो हमारे देश का युवा और छात्र गुजर रहे हैं। और ये खाली नीट के पेपर की बात नहीं, न जाने कितने और पेपर लीक हुए हैं पूरे देश भर में। उत्तर प्रदेश में कितने पेपर लीक हुए हैं, हर नौकरी जो निकलती है उसका पेपर ही लीक हो जाता है। तो आखिर कमी कहाँ है, आखिर भ्रष्टाचार कहाँ है, और आखिर अकाउंटेबिलिटी और जिम्मेदारी ये सरकार लेगी कि नहीं देगी, लेगी, प्रश्न इस बात का है।
2: मैम, आप लोग छात्र के साथ लगातार वहीं पर प्रोटेस्ट करेंगे या क्या है? आप लोग
3: मिलने
2: या मिलने
0: जा रहे हैं? अभी मिलने जा रहे हैं।
4: Okay. Well, the protest by Abhijit Dibke and other protesters is not the only agitation that's taking place in Delhi today at Jantar Mantar. Jammu Kashmir National Conference, the ruling party, has also organized a protest at Jantar Mantar today, and this is with regard to J&K statehood. The Chief Minister of J&K, Omar Abdullah, has been saying that there is an elected government in place at J&K, and this happened after elections, so it's time that the state, that the Union Territory of J&K gets its statehood back. That's the big demand that the Abdullahs have raised, and they have all the legislators and MPs protesting for the same at Jantar Mantar. Farooq Abdullah, National Conference Chief, is in fact leading this protest. Let's take a look at this ground report.
5: हाँ जी,
6: फिलहाल नहीं
7: है। तंजीम का मांग यही है।
2: हाँ,
7: इस वक्त तंजीम का मांग
2: है। क्या आप लोग हमारा
7: पूरा
2: क्या तय हुआ है
7: हमारा ये जो हमारे फैसला करेंगे
2: तो लीडरशिप सस्पेंड किया है क्या?
7: हाँ, बस जा रहे हैं, जा रहे
2: हैं। कहाँ जाएंगे आप लोग?
7: अभी जो लीडरशिप का आदेश
2: नहीं
7: दिया, लेकिन हम तो अपना प्रोटेस्ट
8: करेंगे, छोड़ेंगे, हम वहाँ तक जाएंगे। हम मांग लेके आए कि जो हमारे समाधान किया गया पार्लियामेंट में हमें वो दिया जाए। हम कोई गलत मांग नहीं कर रहे हैं, हमें जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने मांग की, हमें वादा किया, हमें वो चाहिए। अगर वो सच्चे पीएम है वो हमें देंगे, अगर नहीं है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमें अपनी मांग रखनी है, हमें जो जायज मुतालबे अपने हैं हमें वो मांग।
2: और आपने सेशन भी चल रहा है, तो क्या आप चाहते हैं ये सेशन में जो है इस तरह?
8: हम तो चाहते हैं कि जो हमारे एमपी है वहाँ वो भी हमारी बात उठाए, और जो बाकी जो हमारी लाइक माइंडेड पार्टीज है वो भी हमारी बात उठाए।
4: Now let's tell you what's happening in the state of Tamil Nadu. There's a war, there's a political war that's broken out between the TVK and the DMK again. This is after a DMK legislator said something that was derogatory against the Chief Minister of Tamil Nadu, Joseph Vijay. He is supposed to have said defamatory things against the Chief Minister, basically saying that he could even be beaten up if he is locked up in Tamil Nadu Assembly. He has in some ways offended the sentiments of TVK supporters, is what TVK is saying. And of course, the administration has taken action against him. The DMK has been calling out TVK for its allegedly authoritarian ways of working. That's what the DMK says. But let's listen in to the reactions that have come for the story.
9: ஆனால் இந்த உலக நாட்டில் நான் தேடிக் கொண்டிருக்கிறேன் சட்டமன்றத்திலே ஒரு தகப்பனாரை என்று சொல்கிறானே, நான் கேட்கிறேன், மானங்கெட்ட தமிழ்நாட்டினுடைய முதலமைச்சர், உன்னை சட்டமன்றத்துக்குள்ள வச்சு பார்த்துக்கிறோம்டா, நான் என்ன கோமாளி பையில நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன், சட்டமன்றத்தை பூட்டுவானா? பூட்டினா உனக்கு எலும்பு இருக்காது, உடைச்சிட்டு தான் உன்னை இவனை அடிப்பு விடுவானா? பூட்டி பாரு சட்டமன்றத்தை. யார் ஓடுனது? அரெஸ்ட் பண்ணிடுவான்னு சொல்லி நைட்டோட நைட்டா நீ தான் கேரா வேண்ட, யார வச்சுக்கிட்டு நீ ஓடுன கரூர்ல இருந்து? நாங்க உணவு பயந்து ஓடல சட்டமன்றத்தை, நாங்க பயந்து ஓடணுமா? பேடிச்சவ மாதிரி சட்டமன்றத்தில் உட்கார்ந்துகிட்டு இருந்தார் தமிழ்நாட்டினுடைய முதலமைச்சர்.
3: முதலமைச்சர் குறித்து தவறாக பேசிவிட்டார் என்று எங்களுடைய

0: as governments, no business playing with the future of our students.
1: नीट के विषय को लेकर सरकार बहुत संवेदनशील है और नीट की

0: कम से कम ये सरकार ना फेयर एग्जामिनेशन ना फेयर इलेक्शन के पक्ष में
1: नीट परीक्षा और जो विषय छात्रों के गूंज के नाम पे कुछ महीने से भी उठा रहे हैं तो इनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, यही था हमारे रिक्वेस्ट। लेकिन सरकार कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, पार्लियामेंट के अंदर अगर चर्चा चले तो सबके लिए अच्छा है, चर्चा से इनका क्या डर है मुझे मालूम नहीं है।
2: जिन बच्चों की जान गई उनके प्रति एक शब्द नहीं, श्रद्धांजलि तक नहीं, इससे बड़ा अहंकार क्या हो सकता है सरकार। और जब बच्चे यहाँ आए हैं, छात्र नौजवान युवा जब यहाँ आए हैं और वो चाहते हैं सरकार कोई सुने, सरकार में अहंकार कितना कि सुनना भी नहीं चाहती। सुनना तो दूर, अगर वो लोकसभा यहाँ तक आना चाहें अपनी बात कहने तो लाठी और जो अन्याय कर सकते हैं, जो प्रताड़ना दे सकते हैं वो दे रहे हैं। सरकार ऐसे ही है और सरकार के अगर पन्ने पलटे, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी में थी, एक साल का मेडिकल का कोर्स जीरो हो गया था, सेशन जीरो हो गया था। ये बीजेपी के लोग आज से नहीं घोटाला कर रहे हैं, इनकी हमेशा ही कोशिश रहती है घोटाला करने है। और पेपर लीक में जितने लोग शामिल होते हैं वो भाजपा ही हैं।
3: आई वॉन्ट टू टेल टू किरण रिजिजू जी दैट वी वॉन्ट द हाउस टू बी फंक्शनल इन ए कंस्ट्रक्टिव मैनर इन ए डेमोक्रेटिक प्रोसेस। स्पेशली बीजेपी इन फ्रंट ऑफ मीडिया, either it is prime minister or home minister or the parliamentary affairs minister, talks so fair. What they do in the last sessions, whatever their interest they want to implement in the house and run the house, they doesn't want to listen to the opposition parties.
4: This paper leak and neat examination ghotala and नो चंदा चोरी तो है ही है, सब उसके समर्थक उधर बैठे हैं। लेकिन सर ये स्टूडेंट का मामला है, ये स्टूडेंट का मामला है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं। और उसके लिए आज यहां जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है, गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है।
5: Prime Minister Narendra Modi also addressed the media ahead of the first day of the monsoon session of Parliament. He also took a veiled dig at Rahul Gandhi. Listen in.
6: भारत किस प्रकार से उत्साह और उमंग के साथ नई ऊंचाइयों को पार करना चाहता है उसकी इसमें एक झलक है। और ऐसे में जब ये मानसून सत्र आरंभ हो रहा है, देश ने स्पीड पकड़ ली है और संसद का स्पिरिट उस स्पीड में नई ऊर्जा भर सकता है। सकारात्मक स्पिरिट राष्ट्र के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक होता है। हमारे सदन में बहुत अनुभवी सांसद भी है, दल उनका कोई भी हो, लेकिन उनके पास एक लंबा अनुभव है। ऐसे समय में उनके अनुभव की, उनके ज्ञान की संसद को भी जरूरत है, देश को भी जरूरत है। और इसके लिए संसद का चलना, सार्थक चर्चा होना, मिलजुल करके देश को आगे ले जाने के संकल्प लेना, ये मैं समझता हूं कि बहुत ही समय की मांग है।
5: Alright, that's Prime Minister Modi there. He was speaking ahead of the first session of the monsoon session of Parliament. Inside Parliament, there have been repeated adjournments both in the lower house of Parliament as well as the upper house of Parliament, the Lok Sabha as well as the Rajya Sabha. You've had the Speaker of the Lok Sabha ask the MPs to maintain decorum inside the Lok Sabha. But for now, NEET, the paper leak, is taking center stage along with other issues. You also have Dimple Yadav, who has walked from Parliament to Jantar Mantar in solidarity with the students. We're going to get Ashwin.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
3: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933 बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस तेल में।
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा।
8: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
9: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Harisha Sehgal, and Sandy Howard.
8: The show that sets the prime time agenda.
9: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
8: Join me, Harisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.

0: The hospitals and not allowing his family to meet is also unacceptable.
1: मैं कहता हूँ देखिए हमारे बच्चों का फ्यूचर है, हमारे बच्चों का फ्यूचर है और ये बच्चे कल के हिंदुस्तान के मालिक होंगे. इसलिए हम चाहते हैं कि इनका मकसद जो है उसकी तरफ हिंदुस्तान की हुकूमत को देखना चाहिए और वांगचुक को वहाँ से अस्पताल से रिलीज करना चाहिए.
2: पीसफुल प्रोटेस्ट करने का इरादा है. अब हमारे साथ मुझे यकीन है कि हमारे साथ जो है ये लोग भी समझेंगे कि हम अपने स्टूडेंट्स के लिए यहाँ इंसाफ मांगने आए.
3: Well, the monsoon session witnessed a stormy start as repeated sloganeering over the NEET paper leak issue disrupted Lok Sabha proceedings, leading

0: in support of the students. Dimple Yadav accused the government of ignoring the concerns of the youth and refusing to engage in dialogue with protesting students.
1: वांट की छात्रों की बात सुनी जाए क्योंकि अब पानी जो है सर से ऊपर से निकल चुका है देश के लिए जहाँ किसान चाहे हमारा एनवायरनमेंट हो चाहे हमारा युवा हो सभी परेशान हैं और ये सरकार कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है कोई भी फोर्स जाने को तैयार नहीं है जहाँ बच्चे चाहते हैं कि फेयर फेयर एग्जामिनेशन तो हो कम से कम ये सरकार ना फेयर एग्जामिनेशन ना फेयर इलेक्शन के पक्ष में
2: है and NEET examination ghotala and no chanda chori to hai hi hai sab uske samarthak udhar baithe hain lekin sir ye student ka mamla hai ye student ka mamla hai jo lakhon bachchon ki jo bhavishya hai unke bhavishya ke bare mein main baat kar raha hu aur uske liye aaj yahan jantar mantar pe हजारों बच्चे वहां पर आए हैं वहां लाठी चार्ज हो गया है गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है
3: नीट परीक्षा और जो विषय छात्रों के गूंज के नाम पे कांग्रेस कुछ महीने से भी उठा रहे हैं तो इनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए यही था हमारे रिक्वेस्ट लेकिन सरकार कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं है देखिए पार्लियामेंट के अंदर अगर चर्चा चले तो सबके लिए अच्छा है चर्चा से इनका क्या डर है मुझे मालूम नहीं है
4: जिन बच्चों की जान गई उनके प्रति एक शब्द नहीं श्रद्धांजलि तक नहीं इससे बड़ा अहंकार क्या हो सकता है सरकार और जब बच्चे यहाँ आए हैं छात्र नौजवान युवा जब यहाँ आए हैं और वो चाहते सरकार कोई सुने सरकार में अहंकार कितना कि सुनना भी नहीं चाहती सुनना तो दूर अगर वो लोकसभा यहाँ तक आना चाहें अपनी बात कहने तो लाठी और जो अन्याय कर सकते हैं जो प्रताड़ना दे सकते हैं वो दे रहे हैं सरकार ऐसी ही है और सरकार के अगर पन्ने पलटे एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी में थी एक साल का मेडिकल का कोर्स जीरो हो गया था सेशन जीरो हो गया था ये बीजेपी के लोग आज से नहीं घोटाला कर रहे हैं इनकी हमेशा ही कोशिश रहती है घोटाला करने और पेपर लीक में जितने लोग शामिल होते हैं वो भाजपा ही हैं
5: You don't know what the take of DMK is. You should ask them. They opposed the bill the last time. I hope they will oppose the bill this time too. See, please understand that while on paper it looks like everybody is getting an equal percentage of increase, in parliamentary democracy, absolute numbers matter. At the moment, Tamil Nadu and Pondicherry have 40 seats and Uttar Pradesh has 80 seats. So the delta between Tamil Nadu and Pondicherry and Uttar Pradesh is 40. But if you increase the seats by 50%, Tamil Nadu and Pondicherry will go up to 60 and Uttar Pradesh will go to 120. So the delta will become 60. The Ram Mandir issue is not only an emotive issue it is a trust set up by the government even though it's a private trust it performs like a public body it must be open to all scrutinies of all public bodies it involves public money because devotees contributions are from the public at large so it must be open to RTI it must be open to CAG audit it must also be open to debate in parliament about it and there has to be accountability fixed to it
6: I want to tell to Kiran Rijuji that we want the house to be functional in a constructive manner in a democratic process especially BJP in front of media either it is prime minister or home minister or the parliamentary affairs minister talks so fair what they do in the last sessions whatever their interest they want to implement in the house and run the house they doesn't want to listen to the opposition parties
0: And well, before the political showdown began inside Parliament, Prime Minister Modi made a strong appeal for constructive debate. Take a look.
7: भारत किस प्रकार से उत्साह और उमंग के साथ नई ऊंचाइयों को पार करना चाहता है उसकी इसमें झलक है और ऐसे में जब ये मानसून सत्र आरंभ हो रहा है देश ने स्पीड पकड़ ली है और संसद का स्पिरिट उस स्पीड में नई ऊर्जा भर सकता है सकारात्मक

0: स्पिरिट राष्ट्र के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक होता है। हमारे सदन में बहुत अनुभवी सांसद भी है, दल उनका कोई भी हो, लेकिन उनके पास एक लंबा अनुभव है। ऐसे समय में उनके अनुभव की, उनके ज्ञान की संसद को भी जरूरत है, देश को भी जरूरत है, और इसके लिए संसद का चलना, सार्थक चर्चा होना, मिलजुल करके देश को आगे ले जाने के संकल्प लेना, ये मैं समझता हूं कि बहुत ही समय की मांग है। और ये जो स्काई रूट स्टार्टअप है, उसमें जो नौजवान काम कर रहे हैं, मुझे बताया गया उनकी पूरी टीम की जो एवरेज एज है वो सिर्फ 28 साल है। मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं देश के ये स्टार्टअप ने 28 के एवरेज वाले नौजवानों ने अंतरिक्ष में भारत का झंडा गाड़ दिया है, उनको तो बधाई है ही है। लेकिन ऐसी बातें जो हैं, जो भारत को आत्मविश्वास से भर देती है, एक प्रकार से भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं। पिछले वर्ष मानसून सत्र के ठीक पहले भारतीय नागरिक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचा था और परसों भारत का एक युवा स्टार्टअप, उसने बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त की है। विश्व के कम ही देश हैं जहां इस प्रकार से प्राइवेट साहस हुए हैं, और भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में नई उड़ान भरी है, बहुत बड़ी सफलता है।
1: On that note, we slip into a very short break. Come right back. News and updates continue here on NDTV 24/7.

0: His arrest and daily detention in the hospitals and not allowing his family to meet is also unacceptable.
1: मैं कहता हूँ देखिए हमारे बच्चों का फ्यूचर है, हमारे बच्चों का फ्यूचर है और ये बच्चे कल के हिंदुस्तान के मालिक होंगे. इसलिए हम चाहते हैं कि इनका मकसद जो है उसकी तरफ हिंदुस्तान की हुकूमत को देखना चाहिए और वांगचुक को वहां से अस्पताल से रिलीज करना चाहिए.
2: फुल प्रोटेस्ट करने का इरादा है. अब हमारे साथ मुझे यकीन है कि हमारे साथ जो है ये लोग भी समझेंगे कि हम अपने स्टूडेंट्स के लिए यहाँ इंसाफ मांग रहे हैं.
3: I'm not being joined by my colleague Himanshu Shekhar, who joined me from outside the parliament. Himanshu, what is happening right now? We're learning that the Lok Sabha has been adjourned till 3 p.m. and the Rajya Sabha adjourned for the day because of the various disruptions and the ruckus created by the opposition at this point of time. Right, we'll just get back to Himanshu in a bit. But at this point of time, the opposition has created a ruckus in Parliament right now. There have been no feasible debate which has happened on day one of the monsoon session. This, of course, after Parliamentary Affairs Minister, of course, Kiran Rijiju saying that the time of the Parliament needs to be used constructively. But the opposition has created ruckus inside the Parliament on various issues. They've perhaps cornered the government on the re-NEET examination as well. And also on the march towards the Parliament by the CGP supporters, various students there as well, demanding Dharmendra Pradhan's resignation. But let's now give you a roundup of all that has happened on day one of the monsoon session, which witnessed a stormy start as repeated sloganeering over the NEET paper leak issue disrupted Lok Sabha proceedings, leading to adjournments as well. Opposition MPs rushed into the well of the house, raising slogans of students ko nyay do and also demanding an immediate discussion on the NEET row. Speaker Om Birla appealed for order, saying Parliament cannot function amid disruptions because there's been no feasible debate, constructive debate that has happened on day one of the monsoon session today. Samajwadi Party MPs marched from Parliament to Jantar Mantar in support of students. Dimple Yadav accused the government of ignoring the concerns of the youth and refusing to engage in dialogue with the protesting students. Let's take a listen to all the reactions, after which we'll go back to my colleague Himanshu.
4: जिसमें आज लाखों विद्यार्थी परेशान हैं और लाखों विद्यार्थी आज घर बार छोड़ के इतने तंग और तबाह हो गए हैं कि उनकी जिंदगी को जो बर्बाद किया उसके जिम्मेदार कौन है? तो मोदी सरकार है, मोदी जी हैं. तो अपने डिफेक्ट छुपाने के लिए, अपने कमजोरियां छुपाने के लिए किसी को कुछ करना, 56 इंच वालों का, 56 साल के युवाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, कौन से ये कोई बोलने की बात है?
5: वांट की छात्रों की बात सुनी जाए, क्योंकि अब पानी जो है सर से ऊपर से निकल चुका है. देश के लिए जहाँ किसान, चाहे हमारा एनवायरनमेंट हो, चाहे हमारा युवा हो, सभी परेशान हैं और ये सरकार कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है, कोई भी फोर्स जाने को तैयार नहीं है. जहाँ बच्चे चाहते हैं कि फेयर फेयर एग्जामिनेशन तो हो कम से कम, ये सरकार ना फेयर एग्जामिनेशन ना फेयर इलेक्शन के पक्ष में है.
4: दिस पेपर लीक and NEET examination ghotala and no chanda chori to hai hi hai, sab uske samarthak udhar baithe hain, lekin sir ye student ka mamla hai, ye student ka mamla hai jo lakhon bachchon ki jo bhavishya hai unke bhavishya ke bare mein main baat kar raha hu aur uske liye aaj yahan jantar mantar pe हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है. गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही
6: है. नीट परीक्षा और जो विषय छात्रों के गूंज के नाम पे कांग्रेस कुछ महीने से भी उठा रहे हैं, तो इनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए. यही था हमारे रिक्वेस्ट, लेकिन सरकार कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, पालन

0: परमन के अंदर अगर चर्चा चले तो सबके लिए अच्छा है। चर्चा से इनका क्या डर है मुझे मालूम नहीं है।
1: जिन बच्चों की जान गई उनके प्रति एक शब्द नहीं, श्रद्धांजलि तक नहीं, इससे बड़ा अहंकार क्या हो सकता है सरकार। और जब बच्चे यहाँ आए हैं, छात्र नौजवान युवा जब यहाँ आए हैं और वो चाहते सरकार कोई सुने, सरकार में अहंकार कितना कि सुनना भी नहीं चाहते। सुनना तो दूर, अगर वो लोकसभा यहाँ तक आना चाहें अपनी बात कहने तो लाठी और जो अन्याय कर सकते हैं, जो प्रताड़ना दे सकते हैं वो दे रहे हैं। सरकार ऐसी ही है और सरकार के अगर पन्ने पलटे, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी में थी, एक साल का मेडिकल का कोर्स जीरो हो गया था, सेशन जीरो हो गया था। ये बीजेपी के लोग आज से नहीं घोटाला कर रहे हैं, इनकी हमेशा ही कोशिश रहती है घोटाला करने है। और पेपर लीक में जितने लोग शामिल होते हैं वो भाजपा ही हैं।
2: Don't know what the take of DMK is. You should ask them. They opposed the bill the last time. I hope they will oppose the bill this time too. See, please understand that while on paper it looks like everybody is getting an equal percentage of increase, in parliamentary democracy, absolute numbers matter. At the moment, Tamil Nadu and Pondicherry have 40 seats and Uttar Pradesh has 80 seats. So the delta between Tamil Nadu and Pondicherry and Uttar Pradesh is 40. But if you increase the seats by 50%, Tamil Nadu and Pondicherry will go up to 60 and Uttar Pradesh will go to 120. So the delta will become 60. The Raman issue is not only an emotive issue, it is a trust set up by the government. Even though it's a private trust, it performs like a public body. It must be open to all scrutinies of all public bodies. It involves public money because devotees contributions are from the public at large, so it must be open to RTI, it must be open to CAG audit, it must also be open to debate in parliament about it, and there has to be accountability fixed to it.
3: I want to tell to Kiran Rijuji that we want the house to be functional in a constructive manner, in a democratic process. Especially BJP in front of media, either it is Prime Minister or Home Minister or the Parliamentary Affairs Minister, talks so fair. What they do in the last sessions, whatever their interest they want to implement in the House and run the House, they doesn't want to listen to the opposition parties.
4: देश के सामने बहुत गंभीर मुद्दे हैं, राम मंदिर को लेकर के चंदा चोरी, आस्था से धोखा, नीट एग्जामिनेशन अभी भी आंदोलन चल रहा है, 20 बच्चे ने जान दे दी है, आत्महत्या की है, और एक शब्द नहीं निकला है प्रधानमंत्री के मुंह से, एक ना कोई अफसोस, ना कोई माफ़ी, ना कोई शोक, एक शब्द भी नहीं निकला है। तो हमारी मांग ये है कि प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ो और इस मामले में हमें आकर के सदन में बात करो, चुप्पी तोड़ो प्रधानमंत्री।
5: On that note, we slip into a very short break. I'm right back. Lock the line.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुमा केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में,
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा,
10: द फ्रंट लाइन्स ऑफ कारगिल, द फ्यूरी ऑफ ऑपरेशन सिंधू,
11: सो मेनी अटैक्स,
10: द केओस एंड क्राइज ऑफ डिजास्टर ज़ोन्स, द फाइटर जेट कॉकपिट्स and the world's most defining interviews.
11: It's incredible.
10: He has seen history break. Live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
11: Welcome to Left, Right and Center.
10: Hard facts.
11: War struck country.
10: Hard questions.
11: In the Ukraine.
10: 30 years of trust.
12: In the Kargil area.
11: North Ukraine. In France. In Italy.
12: At Srinagar.
11: INS Vikrant.
12: Vishnu Shom for NDTV.
10: Vishnu Shom. Only on NDTV.
13: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
14: Hello and welcome to watching Prime 5 with me, Raisha Sehgal, and Sandy Hub.
13: The show that sets the prime time agenda.
14: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
13: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
15: India Inc.'s most respected names chose India Inc.'s best and brightest.
16: These kind of awards and jury lineup, you are truly giving it the right weightage.
17: I think it's heartening to see talent that there is in across India Inc.
18: We should be awarding companies and individuals who have focused not only on growth but also on bringing good governance.
19: Be part of jury. Vote on the people, the men, the women, the companies in India who have the right stuff is a great opportunity for us.
20: For us, the biggest thing is trust. That's what we provide.
21: We need leaders in India that can help take India being a global superpower.
22: We've got a fantastic jury and we've left all decisions to the wisdom of the jury.
15: Who will earn India's top business honors? Find out at the NDTV Profit Business Leadership Awards.
23: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
24: दिस इज द शो वेयर वी ब्रिंग यू ऑल द हॉट एंड हैपनिंग्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट एंड लाइफस्टाइल।
25: रियली
24: पैशन दैट मेड यू गैग, फिल्म्स दैट मेड यू फैन गर्ल, आर्ट दैट मेड इट टू द ग्राम एंड ट्रेंड्स दैट केप्ट अस विद द प्रोग्राम।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वो मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
3: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
4: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933 बरसों से सरसों।
5: कुछ तो बात है इस दिल में।
6: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द न्यूज रूम टू द कोर ऑफ द स्टोरीज शेपिंग योर वर्ल्ड। Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।
10: सबका राजा आकर मसाला।
11: India Inc's most respected names chose India Inc's best and brightest.
12: I'm delighted to be chairing a committee of such distinguished fellow businessmen, bankers. It's just lovely to be back on this NDTV jury. I

0: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
2: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
3: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
4: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
5: कुछ तो बात है इस दिल में।
6: Launch control, 0 to 100.
7: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
8: This car makes no sense, yet it makes every sense.
9: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
7: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
4: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
5: कुछ तो बात है इस तेल में।
6: Launch control, 0 to 100.
7: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move. This car makes no sense, yet it makes every sense.
8: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
7: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.

0: ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार था। उसके दूसरे दिन उन्होंने मृत्यु घोषित कर दिया उसको। ये हॉस्पिटल की लापरवाही है।
1: एनडीटीवी ट्रेस्ड ईच एंड एवरी अफेक्टेड फैमिली एंड आल्सो विजिटेड मल्टीपल हॉस्पिटल वार्ड्स।
2: एनडीटीवी हैड रिपोर्टेड एक्सटेंसिवली ऑन व्हाई आर दीस डेथ्स हैपनिंग इन राजस्थान।
3: Checked all the medications, the drugs, everything. We've called AIIMS Jodhpur also to do an investigation on it.
4: Big NDTV impact when it comes to Rajasthan maternity deaths. NDTV coverage has now forced action.
5: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.
6: The Shiv Sena Shinde faction corporator is seen assaulting a female doctor and nurses at a hospital in Dombivli.
7: The thug you see is Shinde Sena corporator Ramesh Mhatre of Dombivli. Deputy Chief Minister Eknath Shinde, I have a direct question for you tonight. Will your government immediately arrest this rowdy Ramesh Mhatre?
8: We learned that the action has been taken against the thug neta that we see on our screens right now. FIR has been registered against this man.
9: And joining me live from Mumbai is Ramesh Mhatre. Kya aapko zara bhi sharam nahi aati hai? Aapko kisne haq diya haath uthane ka?
10: Humko haq hamare party ke Balasaheb Thackeray ne diya, jahan bhi anyay ho.
9: Aap cooperator ho ya gunde ho sir? National TV par hain aap. क्या आप माफी मांगेंगे कि आप
10: अगर हमारे कॉर्पोरेशन में एक पेशेंट के लिए पेशेंट को इलाज करने के लिए अगर ऐसा हमको करना पड़ता है उसका हमको अफसोस है।
9: इसका मतलब कि आगे जाके भी अगर अगर अगर अगर चाहे तो ऐसे ही करेंगे। क्या आप उनसे माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे?
10: प्रशिक्षण हम हमारे
9: नहीं मांगेंगे
10: सर।
11: Had it not been for NDTV's coverage, none of this would have happened. And today, 9 hours after I spent 26 minutes questioning him, Ramesh.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
8: Launch control 0 to 100.
9: This isn't just about cars and bikes, this is about how you move.
10: This car makes no sense, yet it makes every sense.
11: What we are sitting inside is a Joby powered air taxi.

0: in 17th of April will stand with the same stand which they took it against delimitation.
1: आप लोगों से प्रार्थना है मेरी, लोगों को गुमराह न करिए। जहां तक वोमेन बिल का सवाल है, महिला बिल का सवाल है, वो ऑलरेडी 2023 में पास हो गया था। पौने तीन साल बाद इन्होंने नोटिफाई किया है 16 अप्रैल को, वो तो ऑलरेडी कानून बना हुआ है, 29 में लागू होना है। इसमें परसीमन की आवश्यकता ही नहीं है, ये बीजेपी का ही बनाया हुआ बिल था, कोई विपक्ष का बनाया हुआ बिल नहीं था। अब बीजेपी को लग रहा है कि और इसमें संशोधन करके हम सीटों को बिगाड़ देंगे, जैसे जम्मू कश्मीर में किया है, जैसा आसाम में किया है, तो हम विपक्ष वाले इसके विरोध में थे और रहेंगे।
2: वुमेन रिजर्वेशन डिलिमिटेशन चूंकि अभी एजेंडे में है नहीं, लेकिन हम स्पष्ट कर दें, वुमेन रिजर्वेशन पे कल भी हम साथ थे, आज भी साथ हैं, आने वाले दिनों में भी रहेंगे। पर वुमेन रिजर्वेशन के नाम पे, महिला आरक्षण के नाम से डिलिमिटेशन अगर किया गया तो इसका पुरजोर विरोध कल भी हमने किया था, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे।
3: ये सरकार का सरकार को तय करना है, यदि डिलिमिटेशन बिल, महिला आरक्षण बिल लाएंगे, हम अवश्य सपोर्ट करेंगे, पहले भी हमने सपोर्ट किया, आज भी हम सपोर्ट करना चाहते हैं।
4: सरकार का वही है ना, मेजोरिटी मिलना चाहिए ना सरकार के पास, मेजोरिटी के लिए तो आप सब देख रहे हो ना क्या क्या कर रही है सरकार। तो आएगा जब डिलिमिटेशन का बिल, तब वापिस पे देखते हैं, चर्चा होती है, क्या उसका निकाल आता है वो बाद में बात करेंगे।
5: Of national conference led by Farooq Abdullah gather at Jantar Mantar demanding statehood for Jammu and Kashmir. National conference leaders are now staging this protest without permission from the Delhi police. While Chief Minister Omar Abdullah has been leading the campaign, party president Farooq Abdullah is leading the protest at Jantar Mantar in the national capital. Meanwhile, the Congress has now gone a step further, demanding statehood, plus calling not only for the restoration of statehood, but also constitutional guarantees for land and job rights.
6: हाँ जी,
7: बुला ना यार।
8: हाँ,
9: हाँ बस जा रहे हैं, अब जा रहे हैं जो आदेश
10: परमिशन
9: नहीं दिया, लेकिन हम तो अपना प्रोटेस्ट करेंगे
10: ना, जहाँ तक हमें छोड़ेंगे हम वहाँ तक जाएंगे। हम मांग लेते आए कि जो हमारे समाज किया गया पार्लियामेंट में हमें वो दिया जाए, हम कोई गलत मांग नहीं कर रहे हैं। हमें जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने मांग की, हमें वादा किया, हमें वो चाहिए। अगर वो सच्चे पीएम है वो हमें देंगे, अगर नहीं है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमें अपनी मांग रखनी है, हमें जो जायज मुतालबे अपने हैं हमें वो मांग।
8: और आप सेशन भी चल रहा है, तो क्या आप चाहते हैं कि ये सेशन में जो है इस तरह
10: हम तो चाहते हैं कि जो हमारे एमपी है वहाँ वो भी हमारी बात उठाए, और जो बाकी जो हमारी लाइक माइंडेड पार्टीज है वो भी हमारी बात उठाए।
11: हमारी तरफ से सवाल है, वजीर आजम होम मिनिस्टर ने वादा किया है रिस्टोरेशन ऑफ स्टेट हो, इलेक्शन हो गए, ये लिमिटेशन हो गया, अभी दो साल तक उनका वादा पूरा नहीं हो रहा।
12: फारूक साहब,
11: उसी वादे के लिए हम लड़ रहे हैं।
12: फारूक साहब, क्या आने में थोड़ा देर तो नहीं हुई?
11: कोई आने में देर नहीं हुई, उन्होंने देर की, हम तो इंतजार कर रहे थे कि जो इलेक्शन हो जाएंगे ये दे देंगे, मगर अभी तक नहीं दिए।
13: शांति से प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी जाती, जमहूरियत का गला घोटा जा रहा है। हम लोग जम्मू कश्मीर से 50-60 ज्यादा से ज्यादा 100 लोग इस उम्मीद के साथ कि जंतर मंतर में बैठ के हम प्रदर्शन करेंगे और अपने हकूक मरकजी हुकूमत से मांगेंगे, मरकजी हुकूमत को याद दिलाएंगे कि उन्होंने सदन के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के सामने ये वादा किया था कि इलेक्शन के फौरन बाद रियासत का दर्जा वापस लौटा दिया जाएगा।
5: On that note, we slip into a very

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
3: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933 बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस तेल में।
5: वी आर ओवर जिमी।
6: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास सुबह।
8: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।
10: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ। 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
11: Launch control, 0 to 100.
12: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
13: This car makes no sense, yet it makes every sense.
14: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
15: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
3: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933 बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस तेल में।
5: वी आर ओवर जिमी।
6: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
7: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैच मेकिंग सर्विस फॉर द एलीट।
8: Launch control, 0 to 100.
9: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
10: This car makes no sense, yet it makes every sense.
11: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
12: Your friend said, ye le le. We said, maybe not. Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.

0: ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार था। उसके दूसरे दिन उन्होंने मृत्यु घोषित कर दिया उसको। ये हॉस्पिटल की लापरवाही है।
1: एनडीटीवी ट्रेस्ड ईच एंड एवरी अफेक्टेड फैमिली एंड आल्सो विजिटेड मल्टीपल हॉस्पिटल वार्ड्स।
2: एनडीटीवी हैड रिपोर्टेड एक्सटेंसिवली ऑन व्हाई आर दीस डेथ्स हैपनिंग इन राजस्थान।
3: Checked all the medications, the drugs, everything. We've called AIIMS Jodhpur also to do an investigation on it.
4: Big NDTV impact when it comes to Rajasthan maternity deaths. NDTV coverage has now forced

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा अपनी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: P-Mark, the mustard specialist since 1933.
6: We are over, Jimmy.
7: Hey, life में scratches तो आएंगे। गाड़ी के scratches को तो Cosmo PPF संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
8: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
9: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
10: अरे मेरे राजा।
11: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रिकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
12: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
13: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
14: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: P-Mark, the mustard specialist since 1933. Barso se sarso.
3: Kuch to baat hai is dil mein.
15: Launch control, 0 to 100.
16: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
17: This car makes no sense, yet it makes every sense.
18: What we are sitting inside is a Joby powered air taxi.
16: Your friend said, ye le le. We said, maybe not. Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
19: Our pure Shahi Paneer Masala.

0: भी परेशान है और ये सरकार कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है, कोई भी फोर्स जाने को तैयार नहीं है। जहाँ बच्चे चाहते हैं कि फेयर फेयर एग्जामिनेशन तो हो कम से कम, ये सरकार ना फेयर एग्जामिनेशन ना फेयर इलेक्शन के पक्ष में
1: नीट परीक्षा और जो विषय छात्रों के गूंज के नाम पे कांग्रेस कुछ महीने से भी उठा रहे हैं, तो इनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, यही था हमारे रिक्वेस्ट। लेकिन सरकार कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, पार्लियामेंट के अंदर अगर चर्चा चले तो सबके लिए अच्छा है, चर्चा से इनका क्या डर है मुझे मालूम नहीं है।
2: जिन बच्चों की जान गई उनके प्रति एक शब्द नहीं, श्रद्धांजलि तक नहीं, इससे बड़ा अहंकार क्या हो सकता है सरकार। और जब बच्चे यहाँ आए हैं, छात्र नौजवान युवा जब यहाँ आए हैं और वो चाहते हैं सरकार कोई सुने, सरकार में अहंकार कितना कि सुनना भी नहीं चाहती। सुनना तो दूर, अगर वो लोकसभा यहाँ तक आना चाहें अपनी बात कहने तो लाठी और जो अन्याय कर सकते हैं, जो प्रताड़ना दे सकते हैं वो दे रहे हैं। सरकार ऐसे ही है और सरकार के अगर पन्ने पलटें, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी में थी, एक साल का मेडिकल का कोर्स जीरो हो गया था, सेशन जीरो हो गया था। ये बीजेपी के लोग आज से नहीं घोटाला कर रहे हैं, इनकी हमेशा ही कोशिश रहती है घोटाला करने है। और पेपर लीक में जितने लोग शामिल होते हैं वो भाजपा ही हैं।
3: I don't know what the take of DMK is. You should ask them. They opposed the bill the last time. I hope they will oppose the bill this time too. See, please understand that while on paper it looks like everybody is getting an equal percentage of increase, in parliamentary democracy, absolute numbers matter. At the moment, Tamil Nadu and Pondicherry have 40 seats and Uttar Pradesh has 80 seats. So the delta between Tamil Nadu and Pondicherry and Uttar Pradesh is 40. But if you increase the seats by 50%, Tamil Nadu and Pondicherry will go up to 60 and Uttar Pradesh will go to 120. So the delta will become 60. The Raman issue is not only an emotive issue, it is a trust set up by the government. Even though it's a private trust, it performs like a public body. It must be open to all scrutinies of all public bodies. It involves public money because devotees' contributions are from the public at large. So it must be open to RTI, it must be open to CAG audit, it must also be open to debate in parliament about it, and there has to be accountability fixed to it.
4: I want to tell to Kiran Rijuji that we want the house to be functional in a constructive manner, in a democratic process. Especially BJP in front of media, either it is Prime Minister or Home Minister or the Parliamentary Affairs Minister, talks so fair. What they do in the last sessions, whatever their interest they want to implement in the house and run the house, they doesn't want to listen to the opposition parties.
5: देश के सामने बहुत गंभीर मुद्दे हैं, राम मंदिर को लेकर के चंदा चोरी, आस्था से धोखा, नीट एग्जामिनेशन अभी भी आंदोलन चल रहा है, 20 बच्चे ने जान दे दी है, आत्महत्या की है, और एक शब्द नहीं निकला है प्रधानमंत्री के मुंह से, एक ना कोई अफसोस, ना कोई माफ़ी, ना कोई शोक, एक शब्द भी नहीं निकला है। तो हमारी मांग ये है कि प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ो और इस मामले में हमें आकर के सदन में बात करो, चुप्पी तोड़ो प्रधानमंत्री।
6: Meanwhile, just before the session began, as customary always, Prime Minister Modi came out and made a strong appeal for constructive debate on the floor of the House. Listen in.
7: भारत किस प्रकार से उत्साह और उमंग के साथ नई ऊंचाइयों को पार करना चाहता है, उसकी इसमें एक झलक है। और ऐसे में जब ये मानसून सत्र आरंभ हो रहा है, देश ने स्पीड पकड़ ली है और संसद का स्पिरिट उस स्पीड में नई ऊर्जा भर सकता है। सकारात्मक स्पिरिट राष्ट्र के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक होता है। हमारे सदन में बहुत अनुभवी सांसद भी है, दल उनका कोई भी हो, लेकिन उनके पास एक लंबा अनुभव है। ऐसे समय में उनके अनुभव की, उनके ज्ञान की

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: We are over, Jimmy.
5: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
6: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैचमेकिंग सर्विस। फॉर द एलीट।
7: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
8: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
9: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
10: P-Mark, the mustard specialist since 1933. Barso se sarso.
11: Kuch to baat hai is dil mein.
12: Launch control, 0 to 100.
13: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
14: This car makes no sense, yet it makes every sense.
15: What we are sitting inside is a Joby powered air taxi.
16: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
17: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज।
18: उसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार। उसके दूसरे दिन दोनों ने मृत्यु घोषित कर दिया उसको। ये हॉस्पिटल की लापरवाही है।
19: NDTV traced each and every affected family and also visited multiple hospital wards.
20: NDTV had reported extensively on why are these deaths happening in Rajasthan.
21: Checked all the medications, the drugs, everything. We called AIIMS Jodhpur also to do an investigation on it.
22: Big NDTV impact when it comes to Rajasthan maternity deaths. NDTV coverage has now

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में,
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।

0: देश का टायर जेके टायर।
1: वी आर ओवर जिमी।
2: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
3: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द न्यूज रूम टू द कोर ऑफ द स्टोरीज शेपिंग योर वर्ल्ड। जॉइन मी गार्गी राउत एज आई ट्रैक ऑल द डेवलपमेंट्स एज दे ब्रेक। लाइव फ्रॉम द एनडीटीवी न्यूज रूम वीकडेज एट 4 PM।
4: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वो मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, or 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
6: P-Mark the mustard specialist since 1933.
7: Launch control 0 to 100.
8: This isn't just about cars and bikes, this is about how you move.
9: This car makes no sense, yet it makes every sense.
10: What we are sitting inside is a Joby powered air taxi.
8: Your friend said, ye le le. We said, maybe not. Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
4: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.
11: The news.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
2: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933 बरसों से सरसों।
3: कुछ तो बात है इस तेल में।
4: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
5: देश का टायर जेके टायर।
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा।
9: वी आर ओवर जिमी।
10: हे लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
11: From the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rao, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
12: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी, आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
13: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ। 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमोनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैच मेकिंग सर्विस। मोदो एलीट।
14: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100।
15: दिस इजंट जस्ट अबाउट कार्स एंड बाइक्स, दिस इज अबाउट हाउ यू मूव। दिस कार मेक्स नो सेंस, येट इट मेक्स एवरी सेंस।
16: The Shiv Sena Shinde faction operator seen assaulting a female doctor.
17: An 11-year-old kid was unfortunately lost his life due to this ghastly accident.
16: 18 maternal deaths, government hospitals across Rajasthan.
18: College for the last 10 years, the college doesn't even exist.
19: The High Court has cancelled the bail granted to Mathre.
20: I very much doubt that Ramesh Mathre is going to forget NDTV in a hurry.
21: Major embarrassment for the BMC administration. Its own general body has rejected that internal inquiry.
22: Several of these women came to these hospitals to deliver their babies. Some of them never even made it back home alive.
23: AIIMS Jodhpur also took do an investigation on it.
24: The college exists only on paper.

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
2: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
3: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
4: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
5: कुछ तो बात है इस दिल में।
6: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
4: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
5: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाह मामा, क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।
10: वी आर ओवर जिमी।
11: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
12: From the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
0: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.
13: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैच मेकिंग सर्विस फॉर द एलीट।
14: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100।
15: दिस इजंट जस्ट अबाउट कार्स एंड बाइक्स, दिस इज अबाउट हाउ यू मूव।
16: दिस कार मेक्स नो सेंस, येट इट मेक्स एवरी सेंस।
17: What we are sitting inside is a Joby powered air taxi.
18: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
19: The news, Ayush. Since when do we do scripts? Fair point. Picture this: the biggest stage, floodlights,
20: wow.
19: 4K. The works.
20: Where's the hook?
19: There's going to be celebrities and guaranteed eyeballs.
20: Where's the hook?
19: Think about this. Front page advertisements and hoardings.
20: Bro, where's the hook?
19: Cross-platform, digital first, virality.
20: Without a hook, no way. The message is clear. It's 2026. You've got to be real in a world of reels. You've got to be original in a world where everything seems generated.
19: That's it. That's what we're looking for.
20: The best campaigns,
19: the hottest trends,
20: the smartest brand moves on our new show.
19: But wait, what do we call it?
20: The Hook.
12: Shiv Sena Shinde faction corporator seen assaulting a female doctor.
21: The 11-year-old kid was unfortunately lost his life due to this ghastly accident.
12: 18 maternal deaths at government hospitals across Rajasthan.
22: College for the last 10 years, the college doesn't even exist.
23: The High Court has cancelled the bail granted to Mathre.
24: I very much doubt that Ramesh Mathre is going to forget NDTV in a hurry.
25: Major embarrassment for the BMC administration. Its own general body has rejected that internal inquiry.
26: Several of these women came to these hospitals to deliver their babies. Some of them never even made it back home alive.
27: AIIMS Jodhpur also took to do an investigation on it.
28: The college exists only on paper.
29: मैं सख्त से सख्त कार्रवाई

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण

0: करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
1: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933 बरसों से सरसों।
2: कुछ तो बात है इस तेल में।

0: देश का टायर, जेके टायर।
1: Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst, meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।
5: We are over, Jimmy.
6: Hey, life में scratches तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
7: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द न्यूज रूम टू द कोर ऑफ द स्टोरीज शेपिंग योर वर्ल्ड। जॉइन मी गार्गी रावत एज आई ट्रैक ऑल द डेवलपमेंट्स एज दे ब्रेक। लाइव फ्रॉम द एनडीटीवी न्यूज रूम वीकडेज एट 4 PM।
8: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज।
9: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमोनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैच मेकिंग सर्विस फॉर द एलीट।
10: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100।
11: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
12: This car makes no sense, yet it makes every sense.
13: What we are sitting inside is a Joby powered air taxi.
14: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
15: The news, Ayush. Since when do we do scripts? Fair point. Picture this. The biggest stage. Floodlights.
16: Wow.
15: 4K. The works.
16: Where's the hook?
15: There's going to be celebrities and guaranteed eyeballs.
16: Where's the hook?
15: Think about this. Front page advertisements and hoardings.
16: Bro, where's the hook?
15: Cross-platform, digital first, virality.
16: Without a hook, no way. The message is clear. It's 2026. You've got to be real in a world of reels. You've got to be original in a world where everything seems generated.
15: That's it. That's what we're looking for.
16: The best campaigns.
15: The hottest trends.
16: The smartest brand moves on our new show.
15: But wait, what do we call it?
16: The Hook.
8: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीट।

0: And we have some breaking news on top of the show. The Delhi police have now detained around 70 people in connection with the violence that erupted during the protest earlier today, with officials claiming that many of those taken into custody are not students. According to police sources, multiple FIRs are now being registered and a comprehensive investigation is also underway to assess whether there was a larger conspiracy behind the clashes. Investigators are also probing on certain handles that allegedly amplified misinformation surrounding the protests. Police cited one viral claim falsely alleging that 7 protesters had been killed, which is not true, and that has now been fact-checked. That false claim also said that 391 injured and 250 arrested. All these claims are fact-checked by the Delhi police. They further described it as an attempt to spread rumors and misinformation and further inflame tensions around this. Sources added that if the involvement of any political party in instigating or fueling the violence is established during the investigation, appropriate legal action will be taken. This at a time when there have been multiple clashes also reported between the protesters, the CGP supporters and the police personnel earlier today, when thousands of not just students but also various other leaders, they were marching towards the parliament. I'm now being joined by Divyankar. Divyankar, police officials keh rahe hain ki 70 protesters abhi arrest chuke hain kyunki ye protest mein sirf students ya chhatra nahi the but bahut alag alag political elements bhi isme jure hue the.
1: जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सुबह 8 बजे से जो संसद मार्च के दौरान जो तस्वीरें निकल कर आईं, 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक अलग अलग राजधानी दिल्ली के जगहों पर जो हिंसक झड़प वाली जो तस्वीरें हैं वो सामने निकल कर आईं, लेकिन हैरानी की बात अभी फ़िलहाल ये है कि जंतर मंतर पर एक बार फिर से जो प्रदर्शनकारी बीते 1 महीने से प्रदर्शन कर रहे थे वो फिर से जुट गए हैं, और ठीक उसी जगह पर जो स्टेज आपको यहाँ पर इन तस्वीरों में नज़र आएगा वहाँ पर आप देख पाएंगे किस तरह से बड़ी संख्या में जो प्रदर्शनकारी सीजीपी के फाउंडर अभिजीत दीप के और उनके साथ साथ तमाम जो समर्थन में जो लोग हैं बीते 1 महीने से यहाँ पर जुटे हुए थे. धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा था. हालांकि आज जो सीजीपी के स्पोक पर्सन हैं और सीजीपी के जो पदाधिकारी हैं उनकी मुलाकात जेपी नड्डा के साथ भले ही हुई, आश्वासन मिला कि जो मांगे हैं उनकी उस पर जो काम है वो भी आगे होगा, लेकिन उस दौरान उसके बाद जो खासकर अगर सड़क पर बात करें तो जो झड़प है वैसी वाली स्थिति जो है वो भी देखने को मिली. लेकिन एक बार फिर से अब से कुछ देर पहले की बात करें तो केरला हाउस, यहाँ से आप 100 मीटर की दूरी पर देखेंगे तो वहाँ पर केरला हाउस है, और उस जगह पर शाम के तकरीबन 5:30 बजे के बाद के से लेकर 8:30 से 9 बजे तक यहीं पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो बैठे हुए थे, और उस दौरान सोनम वांगचुक की जो पत्नी है वो भी इन सभी के साथ बैठी हुई थी. लेकिन एक बार फिर से जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच गए हैं. वहीं अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस की तरफ से जिस तरह से पूरे दिन सड़कों पर एक तरह से कोहराम वाली जो स्थिति है वो देखने को मिली, तमाम सारे जो पुलिसकर्मी हैं वो भी घायल हुए हैं, कई प्रदर्शनकारी जो हैं उनको भी चोटें लगी हैं, तो कैसे ये सारी चीज़ें फैली इसको लेकर जांच करने में जुटी हुई है. यहाँ पर आप देख पाएंगे मेरे ठीक पीछे बड़ी संख्या में जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो आपको यहाँ पर तैनात नजर आएंगे. बैरिकेड जो है वो भी लगे हुए हैं, आरएएफ की जो टुकड़ी है उसे भी तैनात किया गया है. लेकिन इन सब के बावजूद दोबारा एक बार फिर से बात करें तो यहाँ पर जो अभिजीत दीपके हैं और उसके साथ साथ बड़ी संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ पर एक बार फिर से पहुँच गए हैं. देखने वाली बात हुई कि अगला कदम जो है सीजीपी का वो क्या होता है, किस दिशा में जाता है, और दिल्ली पुलिस की जो जाँच आगे बढ़ती है तो उसमें क्या कुछ चीज़ें निकल कर आती हैं, कैसे ये सारी चीज़ें हुई, इसके पीछे कौन है, कौन किन कारणों से जो एक संसद मार्च का आह्वान भले ही किया गया था लेकिन जो मार्च है वो इतना हिंसक रूप में बढ़ गया. क्या सड़कों पर हमने देखा किस तरह से जो गाड़ियां हैं वो भी तोड़ी गई, तमाम सारे दिल्ली पुलिस के जो गाड़ियां हैं वो जनपथ रोड के इसके साथ साथ अशोका रोड जो है वो पूरा ब्लॉक नज़र आया. जनपथ रोड पर तमाम गाड़ियों जो है उनको भी नुकसान पहुँचाया गया. तो ये बड़ा सवाल है कि आखिर जब जाँच आगे बढ़ेगी तो फिर क्या चीज़ें निकल कर आती हैं. वहीं दूसरी तरफ सीजीपी का अगला कदम क्या रहेगा ये अभी भी बड़ा सवाल बना हुआ है. हालांकि सरकार की तरफ से जो बातचीत की जो शुरुआत है वो हो चुकी है.
0: जी जी दिव्यांकर, बिकॉज देयर हैज बीन अ ह्यूज आउटरीच बाय द गवर्नमेंट एज वेल आफ्टर दे मेट द सीजीपी रिप्रेजेंटेटिव. थैंक्स वेरी मच दिव्यांकर फॉर गेटिंग अस द लेटेस्ट ऑन दिस. लेट्स नाउ टेल यू इफ देयर वाज सम काइंड ऑफ अ कंस्पिरेसी बिहाइंड द संसद चलो प्रोटेस्ट दैट टर्न्ड वायलेंट अर्लियर टुडे. Delhi police is investigating if the stir was genuine youth anger or perhaps mobilized mobs, because at this point of time there are several videos which have emerged that show policemen, including the DCP North, being injured as well, stone pelting by the protesters, CGP supporters on the police personnel, protesters also pelting stones, and there were various incidents where the police vehicles were also vandalized. Delhi police say 70 people have now been detained so far, and many of them are not students, so there is some kind of other elements which are also a part of this protest. Investigators are now probing whether there was a larger conspiracy behind the violence, including the possible role of misinformation and social media activity, with some posts allegedly traced to even some foreign-based handles. Police say more arrests are likely as those involved are identified through video footage, while multiple FIRs have also been registered. All right, let's now give you a glimpse of the ground report of day one of the Sansad Chalo Stir by our reporters who've been on ground zero, showing you various sides of the protest today. Take a look.
2: Jantar Mantar, where the protest is underway by the CJP, and what we are given to understand is in just a short while from now the march towards the parliament could begin. However, the police has made it very much clear that there is no permission given for the march, but these are the visuals that we are giving you from the very much protest site. There are sloganeerings, there are placards, there are posters, and they are demanding the resignation of Dharmendra Pradhan, is what their stance is since day one is. Now let us one by one also talk about the developments that have been taking since morning, and you keep on showing you the pictures and also the security deployment. You can see on my right and left hand side there is a massive security deployment over here, and there is some kind of sloganeering over here. There was a small ruckus that took place some time back, and the police had to disperse the crowd by a lathi charge. And here if we keep on walking straight, then the situation remains to be the same.
3: मैं संसद भवन के बाहर हूँ, आप देख सकते हैं, हमारे सहयोगी हिमांशु आपको दिखाएंगे किस तरह से इस एरिया को पूरी तरह से सिक्योर किया गया है। आप देख सकते हैं कि सुरक्षा कर्मियों जो है वो एक्चुअली जो है सीआरपीएफ के लोग हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज के लोग हैं। इस और इधर इधर देखिए, ये पूरा जो इलाका है।

0: The third demand is release, give compensation, cash aid for families of students who died by suicide because of the NEET paper leak. These are some of the core demands that they have rather given out to the government, and with JP Nadda further urging them to end their sit-in. All right, let's now tell you about day one of monsoon session. The monsoon session today witnessed a stormy start as repeated sloganeering over the NEET paper leak issue disrupted Lok Sabha proceedings. That further led to adjournments. Opposition MPs rushed into the well of the house, raising slogans of students ko nyay do and also demanding an immediate discussion on the NEET row. Speaker Om Birla appealed for order, saying that Parliament cannot function amid disruptions. Outside Parliament, Samajwadi Party MPs marched from Parliament to Jantar Mantar in support of the students. Dimple Yadav, meanwhile, accused the government of ignoring the concerns of the youth and refusing to engage in dialogue with protesting students.
1: हमारे सांसद थाने में बैठे हुए हैं और बाहर बच्चों की पिटाई करी जा रही है. ये कौन सी सरकार है? ये कौन सी सरकार है जो सबका साथ सबके विकास की बात कर रही है? आप बच्चों की सुनना नहीं चाहते. सरकार है क्या? अहंकार है आपके अंदर. ये अहंकार बोल रहा है. अगर सरकार होती तो सुनती.
2: हमारे बच्चों का फ्यूचर है, हमारे बच्चों का फ्यूचर है और ये बच्चे कल के हिंदुस्तान के मालिक होंगे. इसलिए हम चाहते हैं कि इनका मकसद जो है उसकी तरफ हिंदुस्तान की हुकूमत को देखना चाहिए.
3: नीट के विषय को लेकर सरकार बहुत संवेदनशील है और नीट की परीक्षा को लेकर सरकार ने उचित कदम उठाए. कुछ लोग जो बीच के होते हैं वो ऐसी गड़बड़ करते हैं जिससे कि छात्रों को और सरकार को इस बात का सामना करना पड़ता है. लेकिन भारत के छात्र भारत के सरकार के लिए जो एक महत्व रखते हैं वो हम सब ने समय समय पर देखा है.
4: जैसे जिस तरह से ये प्रोटेस्ट भी चल रहा है तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि जनता ने जिस सरकार को चुना है वो कैसे सरकार चलाएगी ये उनका अधिकार है. अगर आपको इतना ही है तो आप भी खड़े हो जाइए. तो आप नहीं, आप आर्म ट्विस्ट नहीं कर सकते गवर्नमेंट को कि आपको किसको सैक करिए किसको रखिए. तो ये आर्म ट्विस्टिंग अच्छी नहीं है.
5: जिसमें आज लाखों विद्यार्थी परेशान हैं और लाखों विद्यार्थी आज घर बार छोड़ के इतने तंग और तबाह हो गए हैं कि उनकी जिंदगी को जो बर्बाद किया उसके जिम्मेदार कौन है? तो मोदी सरकार है, मोदी जी हैं.
6: प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है और बच्चों पे आप टियर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो. किस लिए? बच्चे हमारे.
7: कंट्री हैज मेजॉरिटी ऑफ यंग पीपल. Prime Minister Modi is the most anti-youth Prime Minister India has ever had. The boys and girls who are walking the streets of Delhi are not criminals. They are demanding their rights. Their rights are to have an education system that respects them, to have an education system that is fair, to have an education system that is working. There's absolutely nothing wrong in what they're doing, and it's disgusting what the government is doing.

0: is doing.
1: And well before the political showdown that began inside the parliament today, the Prime Minister made a strong appeal for constructive debate. Here are the snippets of his address before the monsoon session began today.
2: भारत किस प्रकार से उत्साह और उमंग के साथ नई ऊंचाइयों को पार करना चाहता है उसकी इसमें एक झलक है और ऐसे में जब ये मानसून सत्र आरंभ हो रहा है देश ने स्पीड पकड़ ली है और संसद का स्पिरिट उस स्पीड में नई ऊर्जा भर सकता है सकारात्मक स्पिरिट राष्ट्र के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक होता है हमारे सदन में बहुत अनुभवी सांसद भी है दल उनका कोई भी हो लेकिन उनके पास एक लंबा अनुभव है ऐसे समय में उनके अनुभव की उनके ज्ञान की संसद को भी जरूरत है देश को भी जरूरत है और इसके लिए संसद का चलना सार्थक चर्चा होना मिलजुल करके देश को आगे ले जाने के संकल्प लेना ये मैं समझता हूं कि बहुत ही समय की मांग है
1: With that, ladies and gentlemen, it's time for us to slip into a very quick break. Don't go anywhere. News and updates continue on the other side.
3: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा आप अपना देख लो
4: द न्यूज आयुष सिंस व्हेन डू वी डू स्क्रिप्ट्स फेयर पॉइंट पिक्चर दिस द बिगेस्ट स्टेज फ्लड लाइट्स 4K द वर्क्स वेयर इज द हुक There's going to be celebrities and guaranteed IP.

0: इन तमाम जगहों पर जहां पर हिंसा हो रही थी वहां से करीब 70 जो लोग हैं उनको कस्टडी में लिया है, जिसमें कई महिलाएं भी शामिल हैं। और दोपहर के बाद से ही इन लोगों से लगातार पूछताछ चल रही है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के बाद और जाँच में साफ हुआ है कि इनमें अधिकतर लोग छात्र या छात्राएं नहीं हैं, बल्कि इनमें कई लोग क्रिमिनल एलिमेंट भी हैं जो कि बाहर से आए थे केवल हिंसा को भड़काने के लिए। तो ये जो 70 लोग पकड़े हैं इनको पुलिस आज रात में गिरफ्तार करने वाली है। इसके साथ में जहां जहां पर हिंसा हुई है उन हिंसा को लेकर 5 केस 5 FIR भी दर्ज होने वाली हैं। पुलिस के मुताबिक इस पूरी हिंसा में 50 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनमें 5 IPS हैं और साथ में बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बलों के जवान हैं जो कि दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में एडमिट हैं। पुलिस के मुताबिक कल ही कॉकरोच जनता पार्टी से कहा गया था कि सेक्शन 163 लागू हो गया है और ऐसे में आप संसद चलो का जो मार्च है वो नहीं निकाल सकते हैं, अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण तरीके से करें। लेकिन आज सुबह से हम लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट्स कर रहे हैं और मैं संसद मार्ग और जंतर मंतर दोनों जगहों पर था। वहाँ पर जो लोग आए थे उन्होंने पुलिस के समझाने के बाद भी बैरिकेड्स तोड़े और बैरिकेड तोड़ने के बाद पुलिस से टकराव हुआ, फिर इसके बाद लाठीचार्ज भी हुआ, थोड़ी बहुत हिंसा हुई जिसमें कई जो प्रोटेस्टर्स हैं वो भी घायल हुए हैं, लेकिन 50 पुलिसकर्मी इसमें घायल हो गए हैं। तो पुलिस पूरे मामले में कॉन्स्पिरेसी का जो एंगल है उसकी जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान से भी कई सारे जो ट्विटर हैंडल से ट्वीट्स आ रहे हैं उसमें अफवाहें फैलाई जा रही हैं। एक ट्वीट में ये कहा गया है कि 7 लोग मर गए हैं इस पूरी हिंसा में, 250 लोग इंजर्ड हो गए हैं, इस तरह की बातें आ रही हैं। तो इसमें जो पाकिस्तान का एंगल है उसको लेकर भी जाँच चल रही है। पद्मजा,
1: दैट इज रियली रियली शॉकिंग घनश्याम तिवारी। द फैक्ट इज दैट देयर वाज अ लैप्स ऑन द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स, लाइक मुकेश तेंगर इज रिपोर्टिंग, दे वर टोल्ड यस्टरडे यू प्रोटेस्ट एट जंतर मंतर, why was there an instigation to try and make the move towards parliament knowing that there are prohibitory orders in place over there?
2: Good evening, Padmaja, to you, the viewers and the fellow co-panelists, and I hope that you will allow me 5 sentences uninterrupted. Point number one, the multi-lakh crore BJP business empire is crumbling. This business empire runs on two things, atrocity and unaccountability. What is the unaccountability? Right in the parliament, BJP is showing its bravado that it has bought enough MPs to have a near 2/3 majority. A government where every single minister is tainted but would not resign. Education minister is tainted, foreign minister is tainted, finance minister is tainted, petroleum minister is tainted, prime minister himself is tainted. A government that holds no accountability, has no face, is today facing the protest of students where 22 children have committed suicide. They cannot even conduct exams. What could be a bigger lapse of accountability and responsibility? In the face of it, if the government does not even have the courage to come out and face the students, has the audacity to go and take Sonam Wangchuk away in the way they did, then it is clear that they have no shame. This is an unaccountable empire that does not believe in democracy. With respect to parliament itself, the prime minister who was there, if he had any courage, rather than making a joke, he would have spoken to students. But our prime minister, who doesn't do press conference, spends more time abroad than he has spent in any year in the past 12 years in the parliament. Just show the statistics. On an average, he's abroad for 30 days in a year and in parliament for 10 to 12 days in a year. It has no belief in the power of people. So what is witnessed today is not a failure of Delhi police. It is not a failure of CJP. Let us not mince our words. It's the failure of Bharatiya Janata Party to build an authoritarian state. And that failure
1: is... how does an authoritarian state allow for this kind of behavior, for people to take the law in their hands and start pelting stones? Most of the vandalism that has happened in civilian areas. There were shops which were vandalized in Connaught Place, office buildings, vehicles, civilian vehicles were vandalized in the heart of Delhi. What does this have to do with the NEET protests? And who will take responsibility for that?
2: Tens and thousands of students were there. So no one sitting over here, whether it is Sanju Verma or any BJP spokesperson, will be able to spin this story that it is the students who are violating. People have seen students being beaten up, tear gas, high-handedness, and we have seen the cowards, which are BJP ministers, not being able to face the students. Just face the students. They don't face the parliament. They go on a shopping spree in the parliament, claim a 2/3 majority, do not have the courage to face the students who are just protesting that a minister must resign because he has no moral authority to be in the position.
1: Okay, so this is
2: a
1: spin.
2: What is wrong about their demand?
1: All right, so let's not try and put a spin on this Sanju Verma in order to discredit a movement, says Ghanshyam Tiwari.

0: Dimple Yadav, who is Samajwadi Party MP, also wife of Akhilesh Yadav, accused the government of ignoring the concerns of the youth and refusing to engage in dialogue with protesting students. Some political reactions coming in on that story.
1: हमारे सांसद थाने में बैठे हुए हैं और बाहर बच्चों की पिटाई करी जा रही है। ये कौन सी सरकार है? ये कौन सी सरकार है जो सबका साथ सबके विकास की बात कर रही है? आप बच्चों की सुनना नहीं चाहते। सरकार है क्या? अहंकार है आपके अंदर? ये अहंकार बोल रहा है। अगर सरकार होती तो सुनती।
2: हमारे बच्चों का फ्यूचर है, हमारे बच्चों का फ्यूचर है और ये बच्चे कल के हिंदुस्तान के मालिक होंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि इनका मकसद जो है उसकी तरफ हिंदुस्तान की हुकूमत को देखना चाहिए।
3: नीट के विषय को लेकर सरकार बहुत संवेदनशील है और नीट की परीक्षा को लेकर सरकार ने उचित कदम उठाए। कुछ लोग जो बीच के होते हैं वो ऐसी गड़बड़ करते हैं जिससे कि छात्रों को और सरकार को इस बात का सामना करना पड़ता है। लेकिन भारत के छात्र भारत के सरकार के लिए जो एक महत्व रखते हैं वो हम सब ने समय समय पर देखा है।
4: जैसे जिस तरह से ये प्रोटेस्ट भी चल रहा है तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि जनता ने जिस सरकार को चुना है वो कैसे सरकार चलाएगी ये उनका अधिकार है। अगर आपको इतना ही है तो आप भी खड़े हो जाइए। तो आप नहीं, आप आर्म ट्विस्ट नहीं कर सकते गवर्नमेंट को कि आपको किसको सैक करिए किसको रखिए, तो ये आर्म ट्विस्टिंग अच्छी नहीं है।
5: जिसमें आज लाखों विद्यार्थी परेशान हैं और लाखों विद्यार्थी आज घर बार छोड़ के इतने तंग और तबाह हो गए हैं कि उनकी जिंदगी को जो बर्बाद किया उसके जिम्मेदार कौन है? तो मोदी सरकार है, मोदी जी हैं।
6: प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है और बच्चों पे आप टियर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो, किस लिए? बच्चे हमारे।
7: कंट्री हैज मेजॉरिटी ऑफ यंग पीपल। Prime Minister Modi is the most anti-youth Prime Minister India has ever had. The boys and girls who are walking the streets of Delhi are not criminals. They are demanding their rights. Their rights are to have an education system that respects them, to have an education system that is fair, to have an education system that is working. There's absolutely nothing wrong in what they are doing, and it's disgusting what the government is doing.
0: And well before the political showdown that began inside the parliament today, the Prime Minister made a strong appeal for constructive debate. Here are the snippets of his address before the monsoon session began today.
8: Bharat kis prakar se utsah aur umang ke sath nayi unchaiyon ko paar karna chahta hai, uske isme ek jhalak hai. Aur aise mein jab ये मानसून सत्र आरंभ हो रहा है, देश ने स्पीड पकड़ ली है और संसद का स्पिरिट उस स्पीड में नई ऊर्जा भर सकता है। सकारात्मक स्पिरिट राष्ट्र के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक होता है। हमारे सदन में बहुत अनुभवी सांसद भी है, दल उनका कोई भी हो, लेकिन उनके पास एक लंबा अनुभव है। ऐसे समय में उनके अनुभव की, उनके ज्ञान की संसद को भी जरूरत है, देश को भी जरूरत है। और इसके लिए संसद का चलना, सार्थक चर्चा होना, मिलजुल करके देश को आगे ले जाने के संकल्प लेना, ये मैं समझता हूं कि बहुत ही समय की मांग है।
0: With that, ladies and gentlemen, it's time for us to slip into a very quick break. Don't go anywhere. News and updates continue on the other side.

0: that disrupted Lok Sabha proceedings and even Rajya Sabha as well, and it led to adjournments in both the houses. Now, the opposition MPs rushed to the well of the house, raising slogans of students ko nyay do and demanding an immediate discussion on the NEET row. Speaker Om Birla appealed for law and order. He said that the parliament cannot function amid disruptions. And outside the parliament, what we saw was there were several opposition MPs. One of them was also Samajwadi Party MPs who were marching from parliament to Jantar Mantar in support of the students. Dimple Yadav, who is Samajwadi Party MP, also wife of Akhilesh Yadav, accused the government of ignoring the concerns of the youth and refusing to engage in dialogue with protesting students. Some political reactions coming in on that story.
1: हमारे सांसद थाने में बैठे हुए हैं और बाहर बच्चों की पिटाई करी जा रही है। ये कौन सी सरकार है? ये कौन सी सरकार है जो सबका साथ सबके विकास की बात कर रही है? आप बच्चों की सुनना नहीं चाहते। सरकार है क्या? अहंकार है आपके अंदर? ये अहंकार बोल रहा है। अगर सरकार होती तो सुनती।
2: हमारे बच्चों का फ्यूचर है, हमारे बच्चों का फ्यूचर है और ये बच्चे कल के हिंदुस्तान के मालिक होंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि इनका मकसद जो है उसकी तरफ हिंदुस्तान की हुकूमत को देखना चाहिए।
3: नीट के विषय को लेकर सरकार बहुत संवेदनशील है और नीट की परीक्षा को लेकर सरकार ने उचित कदम उठाए। कुछ लोग जो बीच के होते हैं वो ऐसी गड़बड़ करते हैं जिससे कि छात्रों को और सरकार को इस बात का सामना करना पड़ता है, लेकिन भारत के छात्र भारत के सरकार के लिए जो एक महत्व रखते हैं वो हम सब ने समय समय पर देखा है।
4: जैसे जिस तरह से ये प्रोटेस्ट भी चल रहा है तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि जनता ने जिस सरकार को चुना है वो कैसे सरकार चलाएगी ये उनका अधिकार है। अगर आपको इतना ही है तो आप भी खड़े हो जाइए। तो आप नहीं, आप आर्म ट्विस्ट नहीं कर सकते गवर्नमेंट को कि आपको किसको सैक करिए किसको रखिए, तो ये आर्म ट्विस्टिंग अच्छी नहीं है।
5: जिसमें आज लाखों विद्यार्थी परेशान हैं और लाखों विद्यार्थी आज घर बार छोड़ के इतने तंग और तबाह हो गए हैं कि उनकी जिंदगी को जो बर्बाद किया उसके जिम्मेदार कौन है? तो मोदी सरकार है, मोदी जी हैं।
6: प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है और बच्चों पे आप टियर गैस कर रहे हो और उनके उनकी पिटाई कर रहे हो, किस लिए? बच्चे हमारे।
7: कंट्री हैज मेजॉरिटी ऑफ यंग पीपल। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द मोस्ट एंटी youth prime minister India has ever had. The boys and girls who are walking the streets of Delhi are not criminals. They are demanding their rights. Their rights are to have an education system that respects them, to have an education system that is fair, to have an education system that is working. There's absolutely nothing wrong in what they're doing, and it's disgusting what the government is doing.
0: And well, before the political showdown that began inside the parliament today, the Prime Minister made a strong appeal for constructive debate. Here are the snippets of his address before the monsoon session began today.
8: भारत किस प्रकार से उत्साह और उमंग के साथ नई ऊंचाइयों को पार करना चाहता है उसकी इसमें एक झलक है, और ऐसे में जब ये मानसून सत्र आरंभ हो रहा है, देश ने स्पीड पकड़ ली है और संसद का स्पिरिट उस स्पीड में नई ऊर्जा भर सकता है। सकारात्मक स्पिरिट राष्ट्र के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक होता है। हमारे सदन में बहुत अनुभवी सांसद भी है, दल उनका कोई भी हो, लेकिन उनके पास एक लंबा अनुभव है। ऐसे समय में उनके अनुभव की, उनके ज्ञान की संसद को भी जरूरत है, देश को भी जरूरत है, और इसके लिए संसद का चलना, सार्थक चर्चा होना, मिलजुल करके देश को आगे ले जाने के संकल्प लेना, ये मैं समझता हूं कि बहुत ही समय की मांग है।
0: With that, ladies and gentlemen, it's time for us to slip into a very quick break. Don't go anywhere. News and updates continue on the other side.
9: When others are warming up, I'm raring to go.

0: मालिक होंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि इनका मकसद जो है उसकी तरफ हिंदुस्तान की हुकूमत को देखना चाहिए।
1: नीट के विषय को लेकर सरकार बहुत संवेदनशील है और नीट की परीक्षा को लेकर सरकार ने उचित कदम उठाए। कुछ लोग जो बीच के होते हैं वो ऐसी गड़बड़ करते हैं जिससे कि छात्रों को और सरकार को इस बात का सामना करना पड़ता है, लेकिन भारत के छात्र भारत के सरकार के लिए जो एक महत्व रखते हैं वो हम सब ने समय समय पर देखा है।
2: जैसे जिस तरह से ये प्रोटेस्ट भी चल रहा है तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि जनता ने जिस सरकार को चुना है वो कैसे सरकार चलाएगी ये उनका अधिकार है। अगर आपको इतना ही है तो आप भी खड़े हो जाइए, तो आप नहीं, आप आर्म ट्विस्ट नहीं कर सकते गवर्नमेंट को कि आपको किसको सैक करिए किसको रखिए, तो ये आर्म ट्विस्टिंग अच्छी नहीं है।
3: जिसमें आज लाखों विद्यार्थी परेशान हैं और लाखों विद्यार्थी आज घर बार छोड़ के इतने तंग और तबाह हो गए हैं कि उनकी जिंदगी को जो बर्बाद किया उसके जिम्मेदार कौन है, तो मोदी सरकार है, मोदी जी हैं।
4: प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है और बच्चों पे आप टियर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो, किस लिए? बच्चे हमारे।
5: कंट्री हैज मेजॉरिटी ऑफ यंग पीपल। Prime Minister Modi is the most anti-youth Prime Minister India has ever had. The boys and girls who are walking the streets of Delhi are not criminals. They are demanding their rights. Their rights are to have an education system that respects them, to have an education system that is fair, to have an education system that is working. There's absolutely nothing wrong in what they are doing, and it's disgusting what the government is doing.

मंत्र इन सपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. डिंपल यादव हु इज समाजवादी पार्टी एमपी आल्सो वाइफ ऑफ अखिलेश यादव अक्यूज द गवर्नमेंट ऑफ इग्नोरिंग द कंसर्न्स ऑफ द यूथ एंड रिफ्यूजिंग टू एंगेज इन डायलॉग.

0: और ये बच्चे कल के हिंदुस्तान के मालिक होंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि इनका मकसद जो है उसकी तरफ हिंदुस्तान की हुकूमत को देखना चाहिए।
1: नीट के विषय को लेकर सरकार बहुत संवेदनशील है और नीट की परीक्षा को लेकर सरकार ने उचित कदम उठाए। कुछ लोग जो बीच के होते हैं वो ऐसी गड़बड़ करते हैं जिससे कि छात्रों को और सरकार को इस बात का सामना करना पड़ता है। लेकिन भारत के छात्र भारत के सरकार के लिए जो एक महत्व रखते हैं वो हम सब ने समय समय पर देखा है।
2: जैसे जिस तरह से ये प्रोटेस्ट भी चल रहा है तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि जनता ने जिस सरकार को चुना है वो कैसे सरकार चलाएगी ये उनका अधिकार है। अगर आपको इतना ही है तो आप भी खड़े हो जाइए। तो आप नहीं, आप आर्म ट्विस्ट नहीं कर सकते गवर्नमेंट को कि आपको किसको सैक करिए किसको रखिए, तो ये आर्म ट्विस्टिंग अच्छी नहीं है।
3: जिसमें आज लाखों विद्यार्थी परेशान हैं और लाखों विद्यार्थी आज घर बार छोड़ के इतने तंग और तबाह हो गए हैं कि उनकी जिंदगी को जो बर्बाद किया उसके जिम्मेदार कौन है, तो मोदी सरकार है, मोदी जी हैं।
4: प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है और बच्चों पे आप टियर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो, किस लिए? बच्चे हमारे।
5: कंट्री हैज मेजॉरिटी ऑफ यंग पीपल। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द मोस्ट एंटी youth prime minister India has ever had. The boys and girls who are walking the streets of Delhi are not criminals. They are demanding their rights. Their rights are to have an education system that respects them, to have an education system that is fair, to have an education system that is working. There's absolutely nothing wrong in what they are doing, and it's disgusting what the government is doing.
6: And well before the political showdown that began inside the parliament today, the Prime Minister made a strong appeal for constructive debate. Here are the snippets of his address before the monsoon session began today.
7: Bharat kis prakar se utsah aur umang ke sath nayi unchaiyon ko paar karna chahta hai, uske isme ek jhalak hai. Aur aise mein jab ये मानसून सत्र आरंभ हो रहा है, देश ने स्पीड पकड़ ली है और संसद का स्पिरिट उस स्पीड में नई ऊर्जा भर सकता है। सकारात्मक स्पिरिट राष्ट्र के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक होता है। हमारे सदन में बहुत अनुभवी सांसद भी है, दल उनका कोई भी हो, लेकिन उनके पास एक लंबा अनुभव है। ऐसे समय में उनके अनुभव की, उनके ज्ञान की संसद को भी जरूरत है, देश को भी जरूरत है। और इसके लिए संसद का चलना, सार्थक चर्चा होना, मिलजुल करके देश को आगे ले जाने के संकल्प लेना, ये मैं समझता हूं कि बहुत ही समय की मांग है।
6: With that, ladies and gentlemen, it's time for us to slip into a very quick break. Don't go anywhere. News and updates continue on the other side.
8: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
9: Launch control, 0 to 100.
10: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
11: This car makes no sense, yet it makes every sense.
12: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
13: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not."
14: Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
15: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
16: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal.
15: The show that sets the prime time agenda.
16: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.